अनगह पंखी पौंदिया लैन सह सूए चाड़ पवाइये जंत नानक पौंदिया गणत नयंत।

पड़ गड्डी लदी है पड़ पर ये साथ पड़ बेड़ी पाए पड़ गड़िए खात पड़िए जेते बर्स बर्स पड़िए जेते मास पड़िए जेते यार जा पड़िए जेते सास।

बोले सुत दरास्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो हो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई सो कहो टल गुर सेवी है एनस सहज सुभय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए

बेशुमार अथाह अगणत अतुलय ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै सतगुरु गुरु गरीब नवाज दीन अर दुनी दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी तिन्हां दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन स्थाना उपर जुड़मिल बैठे गुरु प्यार वाले सतगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा वरताई है, जो अपने पावन चरना कमलां पास जुड़ के बैठन दा सुभाग सतगुरु जी ने बख्शिया है। आओ गुरु प्यार वाले जो धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी दियां लड़ीवार विचारां रोजाना आप संगतां इन्हां पावन स्थानां तो सरवण कर दियां हो, उन्हां चल रहीआं लड़ीवार गुरबाणी विचारां दे नाल सांझ पाईए। विचारां आरंभण तों पहलां मन बिरतियां दी एकाग्रता वास्ते लवाओ गुरु चरणा विच हाजरी रसनावां करो पवित्र और मिलके आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। एक बार फिर करो रसनावां पवित्र और मिलके आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु

जिस पावन शब्द का पाठ आप संगत ने बड़े प्यार सत्कार दे नाल मानयोग भाई साहब होर पासों सरवण किया है, ये पावन बचन तीसरे और चौथे पातशाह धन गुरु अमरदास साहिब जी और गुरु रामदास पातशाह जी तिना दे मुखारबिन तो उचारण किते हुए वडहंस की वार महला चौथा दे सरलेख हेठ शलोक और पौड़ी रूप दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंग 586 दे उपर सुभाईमान दो शलोक और एक पौड़ी। शलोक गुरु अमरदास पातशाह जी देने जी दोवें शलोक और जिहड़ी पौड़ी है ये पौड़ी गुरु रामदास पातशाह जी दी है। अज दे इन्हां पावन बचना विच जो गुरु साहब जी ने प्रकरण बख्शिया उहदे विच मालक जी जिक्र करदे भी सृष्टि सारी गुरु साहब ने आकार शब्द वरत्या। आकार जो भी है निर आकार ते सिर्फ एक ही है, बाकी सारे आकार ही ने। फिर वो दिसे ते भावे ना दिसे, जेड़ा ना दिसन वाला पदार्थ भी है वह भी आकार विच है, सानू अखां नाल नहीं दिसदा। उन्हों वेखण वास्ते सानू कोई ना कोई तरीका ढंग वरतना पैंदा है, पर है वह भी आकार विच। सीधे जे शब्दां च आपां कह लैने आ भी सारी सृष्टि किंतु ये भै विच है, डर दे विच है, ते डर तो रहत सिर्फ एक ही है अकाल पुरख। किंतु जे किते इस आकार वाले दे हिरदे विच ओ निर आकार दी याद वस जाए, इदी डर तो रहत हो जाता है।

तो रहत है ते सिर्फ एक निराकार। मालक पातशाह जी दी पावन बाणी दा वचन है, सतगुरु कहिंदे डर विच है ते सिर्फ एक अकाल पुरख परमेश्वर। डर विच है ते सिर्फ एक दाता जेड़ा डर तो रहत है, बाकी सारे दा सारा संसार उहदे डर दे विच चलण वाला है। उहदे डर तो रहत कोई भी नहीं है, उहदे भय तो रहत कोई भी नहीं है, मतलब उहदे हुक्म विच है, सारे जीव उहदी रजा विच ने। सतगुरु जी आख रहे कहिंदे भय विच पवन वह सद वाओ, भय विच चलना लख दरियाओ, भय विच अगन कढ़ै बेगार, भय विच धरती दबी पहार, भय विच सूरज भय विच चंद, को करोड़ी चलत न अंत। सगलिया भाओ लिखिया सिर लेख, नानक निरभाओ निरंकार सच एक। सारियां दे सिर ते भाओ दा लेख लिखिया, एक निरभाओ है ते ओ निरंकार है। फिर नानक निरभाओ निरंकार होर केते राम रवाल, केते कन कहानियां, केते वेद विचार। फिर उसे रूप नू साहिब जी कहिंदे निरभाओ निरंकार एक ही है सिर्फ, उहदे तो बिना होर केते राम रवाल। डर सभना दे विच, रजा विच सारे, उहदे भय तो उहदे डर तो रहत कोई नहीं है। उहदी रजा विच हर एक नू रहना पैंदा है, उहदे भय विच हर एक नू रहना पैंदा है। सतगुरु कहिंदे भय विच सब आकार है, निरभाओ हर जियो सोए। निरभाओ कौन है? हर जियो, ओ अकाल पुरख सोए ओ। फिर कहिंदे सतगुर सेवे है, गुरु नू चेते करिया। हर मन वसै, अकाल पुरख परमेश्वर जेड़ा ओ मन विच वस जांदा है। जदों ओ मन विच वसद कहिंदे तिथे भाओ कदे ना होए, फिर उत्थे डर कोई नहीं, फिर उत्थे भाओ कोई नहीं। जिवें मालिक जी ने एक थां ते जिक्र करदे आ आखिया ना, कहिंदे जे मनुख नू अकाल पुरख दे डर विच रहना आ जे, फिर किसे होर तो डर के नहीं जिउणा पैंदा। ते जे मनुख अकाल पुरख दे डर तो आखे भी मैं उदा डर उदा भय नहीं रखदा, कहिंदे फिर सारे संसार तो डर के जिउणा पैंदा, फिर सारे संसार तो। एक पासे एक निरंकार दा डर है जिहदे हिरदे विच ओ है, ओ बाकी सारे पासियां तो निडर है, उत्थे कोई भाव नहीं। ते जिथे निरंकार दा भाव नहीं है, उत्थे फिर संसार दा ही भय है, संसार दा ही डर है, ओ फिर सारे संसार तो ही डर के जे आउंदा। गुरु बाबा जी ने इसे करके कहा कहिंदे सतगुर सेवे है, गुरु नू चेते कीतिया हर मन वसै, अकाल पुरख परमेश्वर मन विच वस जांदा है, तिथे उस थां उते भाओ डर कदे ना होए, कदे भी उथे डर नहीं रह जांदा, उथे जीव फिर सारे डरां तों रहत हो जांदा, सारे भय मुक जांदे ने जदों एक अकाल पुरख परमेश्वर दी याद उहदा चिंतन साडे हिरदे दे विच आण वसदा है।

0: हे नानक जीओ जेड़े सच विच रते गए से ना विछुड़ है कहिंदे ओ विछड़दे नहीं फिर ओ सदा जुड़े रहिंदे ने सतगुर सेव समाहे ओ गुरु सेव के गुरु नूं चेते करके हरी परमात्मा दे विच समा जांदे ने गुरु बख्शे सदका कह लो ओ अकाल पुरख विच समा गए जिन्ना ने अपने अज नूं सवारिया है
1: पौड़ी तिस मिलिए सतगुर सजणै

0: मैं जिन्हो मैं विचों मारी
1: कहिंदे तिस मिली है ओनू मिलिए सतगुर सज्जन है जेड़ा गुरु सज्जन है जिस अंतर जिस दे हिरदे विच हर गुणकारी की है अकाल पुरख गुण करन वाला अकाल जिस हिरदे विच वसद है कहिंदे ओ सतगुरु नू अपना सज्जन बना ला मित्र बना ला ओ गुरु नू अपना मित्र बना ला जिस गुरु दे ते परमेश्वर दे विच कोई फर्क नहीं है ओनू अपना सज्जन बना ला जिस गुरु रूपी सज्जन नू मिलके हउमै विचों मारी अपनी हंकार नू खत्म कर देंदा जां इदां कह लो जेड़ा गुरु नू मिल पिया फिर गुरु त्रुट के ओदे अंदरों हंकार नू खत्म कर देंदा है।
0: सो सतगुर पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब

वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहेगुरु साहिब जी।

सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रोवर नाले साचे साहिबा। क्या नहीं करते रह करता तेरे सब किश इस दे सो पावे, सदा सिफ सला तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सचे साहिब। क्या नहीं करते रह साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मै जिन भुखा सब गवाईया, परेशान सुख मनाए वसिया जिन इच्छा सब पजाईया। सदा कुर्बान कीता गुरु बेटो जिस दिया ए वडियाईया, कहे नानु सुनो संतो शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सभागे, घर सभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया, पंच दूत दवास कीते काल कंट कुमारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे, कहे नानक तै सुख होआ तित कर अनद वाजे। आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया तुरे सगल विसूरे।

मैं पमन समाया, ज्योति मैं ज्योत रजाया, माटी माटी हुई एक, रोम नारे की कवन टेक। ऐसे दीन दयाल सतगुरु पहले पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिया दे ज्योति ज्योत पुरब नु समर्पित आप जी दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब विखे अमृत वेले तो दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना अंदर आसा जी दीवार दे शब्द कीर्तन गुरबाणी लड़ीवार कथा विचार गुर इतिहास छे पौड़िया आनंद साहिब जी दे जाप होए बाणी पढ़दिया सेवा संभाल करदिया हजूरी अंदर विचरदिया अनेक प्रकार दिया भुलां गलतियां हो जांदियां ने अखर वादा काटा भुल चुक माफ करनी अगा तू समत बख्शनी दरियाई हुई संगत दी हाजरी दा प्रवान करनी तिल फुल भेटावां दर मंजूर करनिया यात्रावां सफल करनिया जी सतगुरु जी आप जी दे हजूर पवित्र कड़ा प्रसादी देख सज के हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते।

दया करहो किछु मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली

एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की

फिरो सब देश दिसंतर में। प्रभ देखण को बहुत मन चैया, मन तन काट दियो गुर आगे, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखैया। कोई आन संदेश दे प्रभ केरा,

कहे प्रभ अवर अवर कछ की जय, सब बाद शिंगार फोकट फोकटैया, कियो शिंगार मिलन के ताई

नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

0: गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले कीर्ती छुटे ना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: तू ठाकुर तुम तहे अरदास जियो पिंड सब तुम मात पिता हम तुमरी कृपा मैं कोई न जाने ऊचे ते ऊच सगल समग्री तुमरे तुमते हो सो तुमरी गत मित नानक दास। बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दशमी प्रथम।

अखरवाद घाटा भुल चुक माफ करनी आप जिया ने दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल पेटावा दर प्रवान करनी यात्रावा सफल करनी धरो करो गुर सिखी जीवन नाम बानी दिया दाता बख्शनिया आप जिया ने हजूर पवित्र कड़ा प्रसाद जी देख सज के हाजिर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद समूह साध संगत।

रखो सनई सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी बिलावल महला चौथा अंतर प्यास उठी प्रभ केरी सुन गुर बचन मन तीर लगैया मन की बिरथा मन ही जाने

मैं प्रभु देखन को बहुत मन चैया, मन तन काट देओ गुरु आगे। जिन हर प्रभु मार्ग पंथ दिखैया, कोई आन संदेशा दे प्रभु केरा। हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया, मस

नम कर्ता पुरुष निरपो निर्वैर अकाल मूर्त अजोनी सपंगुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम कर्ता।

ਇਹ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਦਵਣ ਸਦੀਕ ਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵੇਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਉਤ ਭੂਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਦੁਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਬਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵਡਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜੈਨੋ ਦੇਨੋ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਕਸਮ ਵਿਸਾਰੀ ਤੇ ਕਮਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਇਸ ਨਾਥ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਾਂ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਅਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਓ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸ ਹੀ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤਵਹੀ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪ੍ਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਘਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਾਈਤਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸਵਾਹੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸੈਂ ਕੁੰਸਾ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨੇ ਮਹੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਏ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਬਰਿਆ ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ
जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पार बरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब ते आवहीं तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर ते आवहो संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हौ तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर ते आवहि हर दे आवहि तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जमकी फांसी जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी तिनका भौ सब गवासी जिन से व्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनिक अनेक अनंता तेरी अनक करें हर पूजा जी तपताप ही जपही बयंता तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमृत शास्त्र जी कर किरया खटक्रम करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावै मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुझे बड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुदे आपे पावै सोई वरतै जी तू आपे करहें सो होई तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सत्यार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू दे सोई हौ पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ते आया जिसनौ कृपा करहें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मंगवाया तुदे आप विछोड़या आप मिलाया तू दरिया वो सब तुझी माहे तुझ बिंदु जा कोई नाहे जी जन सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़या संजोगी भेल जिसनों तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाणे जिनार से बया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद मिन दूजा अवर ना कोए तू कर वेखें जाने सोए
जननान गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सर्व रड़ै पाईले निवासा। पानी पावक तिने किया पंकजो मह पग नहीं चाले। हम देखा तह डूबियले मान एक ना चेतस मूढ़ मना। हर विसर तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जती सती नहीं पड़या। मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिनकी शरणा। जैनो तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा। भई प्राप्त मानक देहुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवरकाज तेरा किते ना काम मेल साध संगत भाजे केवल नाम। संयाम लाग पवजुल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ। जप जप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जाने आहर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो हो शर्मा। जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जाने आहर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो हो शर्मा। इक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फते बादशाही दसवीं। कबियो बाच बेनती चाओ पाई अमरी करो हाथ दे रक्षा। पूरन होए चित्त की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबय तुम काव हो। आभात दें मोहे बचाव हो सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सबय करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिये। सबैरन को आय संगरिये पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अबर ना थे आऊं। जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन शतर हमारे मारिये। आभाद मुझे उबरिये मरण काल का त्रास निवरिये। हो जो सदा हमारे पच्छा श्रिया सुजो करी हो रक्षा। राख लियो मोहे राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दास कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। दमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो। दमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है तहे हमारा। दमन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षण उपजायो। आदि अंत एक के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी। शिवकन को शिवगुण सुख दियो शत्रण को पलमो बद कियो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत। चिंटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछन्ने कट कट के पट पट की जन्ने।
जाव उदकर्क करा कर तारा प्रजा तरत तव देहे अपारा जवे आ कर्क करत हूं कब हूं तुम मैं मिलत देहे धर सब हूं जेते बदन सृष्ट सब तारे आप आपणी बोझ उचारे तुम सब ही ते रहत नरालम जानत बेद भेद अर आलम रंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कृपाण अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव रंकार का चीनत नह भिव आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखा ना जय पसारा किह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहीं पूपा अंड जे रसे तज कीनी उत्पज खान बहुर रच दीनी कहो फूल राजा हवाए बैठा कहो सिमट भयो शंकर अकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आ जुगा स्वरूप स्वयंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे उबार आसिख संहरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रणगाता जे अस तुझ तब शरणी बरे तिनके दुष्ट दुख तुहाए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार दे है ताके काल निकट न है रक्षा हुए ताही सब कल्ला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल्ला कृपा दृष्ट तन जाहे न हरे हो ताके ताप तनक मै हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शहा शवाए सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें सवारा कल फांसती ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारू कहा दारिद दुष्ट दोख तेरा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी सर्व ठोर मो हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी सर्व ठोर मोह सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई सवैया पाए गहे जबते तुमरे तबते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक नाम हन्यो सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहुपेद कहें हम एक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुम भी कर मैं ना कहो सब तो हे बखान्या दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बहें गहे की लाज अस गोविंदास तुहार सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बहें गहे की लाज अस गोविंदास तुहार राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद
आनंद भया मेरी माई, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मन मजियां वाधाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आईयां, शब्दो तांगावो हरि केरा, मन जिनी वसाया, कहे नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया, तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो, तू मन मेरे, दूख सब विसारना, अंगीकार, ओहो करे तेरा, करे सब सवारना, सबना गलना सम्रत स्वामी, सो क्यों मन विसारे, कहे नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले, सचे साहेबा, क्या नही घर तेरा, घर तां तेरा सब किछ है, जिस देहें सो पावे, सदा सिफत सलाहा तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसिया, बाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब, क्या नाही घर तेरा, सच्चा नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा, जैन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया, जैन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो, जिस दिया एह वडियाइया, कह नानक सुनो संतो, शब्द धरो पे आरो, सच्चा नाम मेरा आधारो, बाजे पंच शब्द तित कर सुभागे, कर सवागे शब्द बाजे, कला जित कर तारिया, पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिनको, से नाम हर के लागे, कह नानक तै सुख होआ, तित कर अनहद बाजे, आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल वसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पाए सरसे, पूरे गुर ते जानी, सुनते पुनी, कहते पवित, सतगुर रहा भर हुरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तुरे, सुनते पुनी, कहते पवित, सतगुर रहा भर हुरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तुरे, मुंदावणी महला पंजवां, थाल विच तिन वस्तु पइयो, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो, जे को खावे, जे को पुंचै,

कि मत पत दा राखाप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारे अंगुर धामा दे जिन्हां तो खाल

पूरा पवित्र कड़ा प्रसाद जी देख सज के हाजिर है। धर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद समूह साध संगत विच वरताउ।

अक्कल बिकल पई गुरु देखे हों लोट पोट हुए पैया राहौ हो निरखत फिरों सब देश दसंतर मैं प्रभ दिखण को बहुत मन चैया मन तन काट देओ गुर आगे जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखैया कोई आन सदेसा दे प्रभ केरा रिद अंतर मन तन मीठ लगैया मस्तक काट देओ चरना तल जो हर प्रभ मेले मेल मलैया चल चल सखी हम प्रभ पर बोध गुण कमन कर हर प्रभ लहिया भगत वछल ओआ को नाम कहत है शरण प्रभु तिस पाछे पैया खिमा सिंगार करे प्रभ खुशियां मन दीपक गुर ज्ञान बलैया रस रस भोग करे प्रभ मेरा हम तिस आगे जियो कट कट पैया हर हर हर कंठ है बनिया मन मोती चूत वडगण गह नैया हर हर श्रद्धा सिर बिछाई तब छोड़ न सके बहुत मन पैया कहे प्रभ अवर अवर किच की जय सब सिंगार फोकट फोकटैया कियो सिंगार मिलन के ताई प्रबलियो सोहागन थूक मुख पैया हम चेरी तू अगम गोसाई क्या हम करें तेरे बस पैया दया दीन करह रख ले हो नानक हर गुर शरण समैया हम चेरी तू अगम गोसाई

एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवत जी सहाय वार। श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवत सिमरकै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाउ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस दिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरै कर नौन दया वै ताय। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। सब थाई होए सहाय दसहा पातशाही आज दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। पंजा प्यारे आ चौहान साहिब जादिया चहलियां मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपे आ वंड छकिया देव चलाई ते गवाई। देख के अनडिठ कीता तिना प्यारे आ सचियारे आदि पवित्र कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्मेत सीस दिते बंद बंद कटवाए। खोपड़ियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े तर आरिया नहल चिराए गए। गुरुद्वारे आदि सेवा लई कुरबानियां कीतियां। धर्म नहीं हारे आ सिखी के सांस वासा नाल निभाई। तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारे आदा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चेते आवे चेते आवण का सदका सर्व सुखोए। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत। देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसहा दान भरोसा दान दाना सिरदाना मदान। श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन स्नान। चौंकियां झंडे बोंगे जुगो जुगे अटल धर्म का जयकार बोलो जे। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप पाए गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारे आ गुरधामा तों जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया ए। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान अपने प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाणिया दे मान नेताणिया दे तान ओटिया दी ओटने आसरिया दे आसरा। सचे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जिया दे हजूर। शब्द कीर्तन लड़ी वार गुरु इतिहास कथा विचार। छे पौड़ियां आनंद साहिब जी के पाठ जी की अरदास है जी। अखर वादा घाटा पुल चुक माफ करनी गहां तो समत बख्शनी। दर आई हुई संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी। तिल फुल पटावा दर मंजूर करनी आ यात्रा मा सफल करनी आ। सतगुरु जी आप जिया दे हजूर। पवित्र कड़ा प्रसादी देख सज के हाजर है दर प्रवान होए प्रवान होया। प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो। आप जी करो कृपा अपनी अमृतमयी बाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दी दात बख्शो। हुक्म अनुसार जीवन जीवण दी समर्था ते सूझ बख्शनी। अखर वादा घाटा पुल चुक माफ करनी। सरबत दे कारज रास करने सिख पढ़ दे सुन दे।

जिहबाइक कवन गुन कहिए बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना कि नहीं लही।

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल।

ज्योति कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती अनहता शब्द वजंत पेरी रहाऊ सहस तव नैन नर नैन है तोहे को सहस मूर्त ननायक तोही सहस पद विमल नानी एक पद गंध विन सहस तव गंध विचलत मोही सब में ज्योत ज्योत है सोए तिस दे चानन सब में चानन होए गुरसाखी ज्योत प्रगट हो।

चौथा काम क्रोध नगर्व भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हरली मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर दंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर साधन जाने अंत अंतर हो मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चले चुभै दुख पाव है जम काल सह सजंडा हे हर जन हर हर नाम समाने दुख जन मन पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर शोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड वड्डा हे जन नानक नाम धार टीक हर नामे ही सुख मंडा हे।

रूप महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदा के लख करोड़ सच्चे सबदान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सेवत।

0: जी की फतेह।
1: चरण ता पर सके अथ चरण गुर अमर पवल रै, हाथ ता पर सके अथ हाथ लगै गुर अमर पै, जी ता पर सके अथ जी गुर अमर पनिजै, नैन ता पर सके अथ नैन गुर अमर पखीजै, सरवण ता पर सके अथ सरवण गुर अमर सुनिजै, सके अथ सो हियो जित ही बसै गुर अमर दास निज जगत पित, सके अथ सो सिर जालप भणै जो सिर निवै गुर अमर नित, ते नर दुख नह पुख

सेव नो करै ते नरस सहस समपै ते नर दुलीचै बह ते नर उथप बिथपै सुख ले ते नर संसार में अबै पट रिपमत तह सक्याथ ते नर जालप पणै गुर अमरदास सुप्रसन्न जह तै पढ़ियो इक मन धरियो इक कर इक पछाणियो नैन बहन मोह इक इक दुहु ठाए न जानियो सुपन इक परतख इक इकस मै लीनो तीस इक अर पांज सिद्ध

जे मत गही जय दे जे मत नामै समाणी जे मत तिर लोचन चित भगत कंबीर है जानी रुक मांगद कर तूत राम जंपो नित पाई अमरीक प्रहलाद शरण।

गुर अमरदास परसिए पोहपातिक बिनासे गुर अमरदास परसिए सिद्ध साधिक आशा सह गुर अमरदास परसिए ध्यान लहिए पौ मुक्य है गुर अमरदास परसिए अभो लबे गौ चुक है एक बिन दुगण जो तो रहे जास मंत्र मान वैल है जाल पदार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठे मिल है सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग रहो ताते अंगद लहना प्रगट तास चर नहलिव रहो तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवन वखानो जो गुण अलख अगम तिन्ह गुण अंत न जानो बोइथो बिदाते निर्मयो सब संगत कुल उदरन।

0: तो पास शरण।
1: आप नारायण कलातार जग मह परवर्यो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो जह कह तह परपूर शब्द दीपक दीपायो जह सिखे संग रहयो तत हर चरण मिलायो नानक कुल निमल अवतरयो अंगद लहणे संग हो गोरे अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पासरण तो जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिखे शरण परहे ते उबरे छोड़ जमपुर की लिखे भगत पाए भरपूर।

कन्हर बूंद बसो रुमावल खुशम बसंत गनंत नावे राव सास किरण उदर सागर को गांग तरंग

अर भोजन नाम रस अर भोजन सदा चाहे मुख मिष्ट बानी धन सात गुरु सेवियो जिस पसाए अगत गम जानी कुल समूह समुद्र पायो नाम निवास सक्यात जन्म काल उचरै गुरु परस्यो।

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरबरे कायनात रोशन चराग, बारगा इनायत बेअंत भगतां दी टेक, दसां पातशाहियां दी जागदी जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जीआं दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जीआं दे अमृत वेले दे दर्शन कर रहे हां, जो सतगुरां ने पावन हुक्म दी दात बख्शी है। सो पावन हुक्म धनासरी राग दे अंदर पहले पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का शब्द है, जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर 685 अते 686 अंग दे उपर सुभाईमान है। सो पातशाह जी पावन हुक्म दे राही ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਰਵਨ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ, ਹਰ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ, ਸਰਵਰ ਮਹਿ ਹੰਸ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਪਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: नानक मुसे गैण विहुणी खाए गया जम काल महला पहला।
1: वाइन छिल नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड उड रावा झाटा पावे खै लोक सह कर जाए।

डांड जेर जु पूजा खाणी से जाहा सो मैं जाने नानक सरम रजता नानक जंत पाए कै समाले सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनी ता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी स्वास्थ्य तिस तिस दिबाना भाग्य।